बलबल जाओ श्याम सुंदर को अकथ कथा जी की बात सुनी। गुरबाणी दीआं इन्हां पंक्तियां दे विच दस्सिया गया कि उस सोहणे प्रभु तों कुरबान होण नूं दिल करदा है जिस दे सरूप दा बयान करना बहुत औखा है, ते उस परमात्मा दे गुणां दी गल असी अपने गुरु तों सिखीए।

सबे कट रामा बोले, बोले रामा बोले, राम बिना को बोले रे। इंसान दे अंदर उस परम पिता परमात्मा दा निवास है। उह परम पिता परमात्मा हर एक इंसान दे अंदर वसदा है, ते उह परम पिता परमात्मा ही साडे अंदरों हर एक शब्द बुलवाउंदा है। और उस परमात्मा तो बिना साडी अपनी कोई भी वखरी होंद नहीं है।

तुम सामने हो तो हर मौसम बहार सा लगता है। तुम सामने हो तो हर मौसम बहार सा लगता है। तुम्हारे बिना हर लम्हा बेकार सा लगता है। मोहब्बत की बस यही सबसे खूबसूरत बात है। मोहब्बत की बस यही सबसे खूबसूरत बात है। तुम्हारे साथ हर दिन एक नया त्योहार सा लगता है। तुम्हारे साथ हर दिन एक नया त्योहार सा लगता है। बाकी जो तो अपने दा साथ होवे तो जिंदगी बेहतरीन, जिंदगी रंगीन लगती है, जिंदगी सोहनी लगती है। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। FM बैंड 102.7 MHz, FM बैंड 103.6 MHz ते नाल दी नाल न्यूज़ ऑन AIR ऐप वाले दोस्तों नूं प्यार भरी सत श्री अकाल। संडे वाली गुड वाली मॉर्निंग जनाब। अज दी एक सजरी सवेर दा आगाज हो चुका है। प्रोग्राम गुड मॉर्निंग जलंधर लैके थोड़ा दोस्त RJ ललित सोनी हाजिर हो चुके हैं जनाब। सो मेरा और थोड़ा साथ बने रहेगा ठीक 10 बजे तक। बहुत सारिया गल्लां, बहुत सारिया बातां होणगियां अज दी इस संडे वाली खूबसूरत वाली सजरी सवेर दे विच। ठीक 8:30 बजे तक प्रोग्राम गुड मॉर्निंग जलंधर दा तुसी आनंद माणदे रहोगे। 8:30 बजे होणगियां पंजाबी दे विच खबरां, 8:40 दे होएगा म्यूजिकली बैक टू बैक दा खूबसूरत सफर अड्डी टप्पा, और फिर 9 बजे आगाज होएगा सब दे दिलां दी धड़कन पंजाबी विरसे दियां बातां पाउंदा प्रोग्राम दिल अपना पंजाबी, जिथे तुसी दिल खोल के दिल दियां गल्लां कर सकते हो। और ठीक 9 बजे तुसी अपने वॉइस मैसेज दे नाल, अपने टैक्सट मैसेज दे नाल, अपने बुजारत, अपने किसी कविता दे नाल, पोएट्री दे नाल, अपने किसी गीत दे नाल हाजरी लगा सकते हो प्रोग्राम दिल अपना पंजाबी दे विच। 9855-10-10-27 साडा नंबर रहेगा। सो प्रोग्राम गुड मॉर्निंग जलंधर दे विच गल्लां बातां दे नाल नाल गीत संगीत दा तड़का भी लगदा रहेगा, और थोड़ी रूह नूं मिठी मिठी सुकून देने वाले मिठे मिठे गीत थोड़े तक पहुँचाए जाणगे। सो आगाज़ करते हैं अज की इस खूबसूरत सजरी सवेर का इस खूबसूरत गीत दे नाल मोहित चौहान ते श्रेया घोषाल दियां खूबसूरत आवाज़ों।

और मौसम केंद्र का अनुमान है कि अगले 24 घंटे तो लैके 48 घंटे तक आसमान दे विच बदल छाए रह सकते हैं और कई जगह ते तेज बारिश भी हो सकती है। बाकी इस बदलते हुए मौसम दे विच तुसी अपना ढेर सारा ख्याल रखना है और अपना और अपने बुजुर्गों का ख्याल रखना है और तंदुरुस्त रहना है और प्रोग्राम इसी तरह ही FM रेनबो ते इंजॉय करते रहना है। अगला खूबसूरत गीत हरभजन मान की खूबसूरत आवाज विच इंजॉय करते हैं और मिलते हैं इस खूबसूरत गीत तो बाद प्रोग्राम गुड मॉर्निंग जलंधर दीआं खूबसूरत गल्लां बातां दे नाल।

सो सब तो पहले गल करांगे पहलवान रुस्तम हिंद दारा सिंह के बारे। जी हाँ, भारत के महान पहलवान अदाकार पंजाब की शान दारा सिंह, जिन्होंने असं अज याद कर रहे हैं। क्योंकि अज ही के दिन उन्हों का जड़ाया निधन होया सी। उन्हों की कहानी सानू दसदी है कि किवें अपनी मेहनत के दम से जड़ाया एक वड्डा मुकाम हासिल किया जा सकता है। जेकर थोड़े सुपने वड्डे होण, जेकर थोड़े हौसले वड्डे होण, तां मंजिलां थोड़े सामने चुक जांदियां ने। और दारा सिंह जी बारे एक गल बहुत मशहूर है कि 500 मुकाबलों के उन्होंने जड़ाया फाइट की थी, जिदे कोई भी मुकाबला वो हारे नहीं सन। और उन्होंने सिर्फ मुकाबले ही नहीं जीते, उन्होंने करोड़ों नौजवानों के दिल भी जीते सन। और खासकर उन्होंने अदाकारी ने हर किसी को प्रभावित किया, खास करके उन्होंने करैक्टर जड़ा उन्होंने निभाया सी। सीरियल दे विच हनुमान जी का किरदार जड़ा निभाया सी, लोगों के दिलों के अज भी वो कितने ना कितने अपनी जगह बना के बैठा हुआ है। पहलवानी के नाल नाल उन्होंने अदाकारी दे विच भी कदम रखिया, और नाल दी नाल उन्होंने फिल्म लिखन दे विच भी अपना हाथ अजमाया। सो उन्होंने जिंदगी उन्होंने जीवन सानू यह सिखाता है कि कामयाबी का कोई शॉर्टकट नहीं होंदा। जे मिट्टी नाल रिश्ता बनिया होवे, जे पसीना बहाउण नूं तुसी तैयार होवो, तां तुसी अपनी किस्मत की कहानी खुद लिख सकते हो। और सब तो वड्डी गल है कि ताकत जिहड़ी है सिर्फ बाहां दे विच ही नहीं हुंदी, असली ताकत तुहाडे इरादियां दे विच हुंदी है। जेकर तुहाडे इरादे मजबूत होणगे तां तुसी जिंदगी दे विच ओह मुकाम हासिल कर सकते हो जो तुसी करना चाहुंदे हो, जो मुकाम तुसी पाउणा चाहुंदे हो। सो इस दे नाल एक होर सैलीब्रिटी दी बारे गल करांगा कि एक होर सैलीब्रिटी नूं अज असीं याद कर रहे हां, उस महान कलाकार नूं जिहदा नाम सुणदे ही सिनेमा दे उस गोल्डन एरा दी याद आ जांदी है, जिसने अपनी अदाकारी दे नाल अपनी कलाकारी दे नाल जड़ाया अपने दम ते एक वक्री पहचान बनाई। ओ खलनायक जिसनूं हीरो तो भी वध प्यार कीता गया, गल कर रहे हैं प्राण कृष्ण सिकंद दी, यानी कि साढ़े सब दे फेवरेट प्राण जी दी। प्राण जी जिन्हां दा सुपना